0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। श्रोताओं, मैनिफिका ह्यूमानिटास का दूसरा अध्याय हमारे लिए सामाजिक धर्म शिक्षा के मूलभूत आधार और सिद्धांतों की चर्चा करता है। जब हम सम्मान की बात कहते हैं तो हम इस शब्द का उपयोग सदैव उसी तरह से नहीं करते हैं। कभी कभी हम उसे नैतिक मानवीय सम्मान के रूप में उपयोग करते हैं, मुख्यतः उस रूप में जहां एक व्यक्ति अपने कार्य या कार्य करने के विकल्पों का चुनाव करता है। वहीं दूसरी जगह में हम सामाजिक सम्मान के बारे में विचार करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की परिस्थितियों और समाज में ठोस रूप से मिलने वाले सम्मान को व्यक्त करता है। वहीं दूसरे परिदृश्यों में हम इसका उपयोग अस्तित्वगत सम्मान के रूप में करते हैं। कहने का अर्थ, जिस रूप में व्यक्ति अपने अस्तित्व को देखता और जीवन के मूल्य को समझता है, सम्मान के इस रूपों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इन विचारों के अलावे हम अस्तित्व विषयक सम्मान की गहराई और महत्वपूर्ण स्तर को भी पाते हैं। यह वह सम्मान है जो हर मानव के जीवन का हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसे जीवन प्राप्त है। ईश्वर उसकी चाह रखते, उसकी सृष्टि करते और उससे प्रेम करते हैं। कोई भी पाप, असफलता, अपमान या परित्याग एक मानव के वृहद जीवन मूल्य को कम नहीं कर सकता है, जिसकी चाह ईश्वर करते, जिसे उन्होंने अपने समान गढ़ा है। श्रोताओं, इस भांति हर मानव का मूलभूत सम्मान ना तो अपने में हासिल किया जा सकता और ना ही कमाया जा सकता है, और ना ही हमें इसे न्यायसंगत घोषित करने की जरूरत है। हाल ही की घोषणा दिनितास इन्फिनिता इस विषय पर कलिस्से के विचारों को संक्षेपित करती है। हर मानव अपने में एक अद्वितीय सम्मान को वहन करता है जो उसके अस्तित्व का अटूट हिस्सा है और जो हर परिस्थिति, अवस्था या हालात में बना रहता है, जिसका सामना वह व्यक्ति कभी भी दूसरे शब्दों में सदैव और बिना किसी अपवाद के कर सकता है। हर मानव का सम्मान दो कारणों से अनंत रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं। पहला, ईश्वरीय प्रेम के कारण जो हमें अपने संग मित्रता हेतु बुलाते हैं, यह अनंत है, और दूसरा उनका प्रेम जो हमारे लिए पूर्ण रूपेण शर्तहीन है और हम अपनी ओर से कितनी भी कोशिश कर लें तो भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इसे मिटा सकती या हमें इससे अलग कर सकती है। श्रोताओं, कलिसिया कृतज्ञता पूर्ण ढंग से यह स्वीकार करती है कि मानवीय अधिकारों को पहचान प्रदान करना और उसे घोषित करना मानवीय गरिमा की अपरिहार्य मांगों का प्रभावकारी ढंग से जवाब देने के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। इस संदर्भ में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा कि मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्रों ने 10 दिसंबर 1948 में की, वर्तमान समय में हमारे लिए मानवीय चेतना की एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। यह मानवता के लंबे और कठिन मार्ग में मील का एक पत्थर है। यही कारण है कि ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से मानव अधिकार कोई बाह्य रूप से मानव से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह मानव सम्मान की एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया जाता है। मानव अधिकार अपने में अखंडनीय है, क्योंकि वे मानव के जीवन और मानवीय सम्मान में निहित हैं। यही कारण है कि वे अपने में वैश्विक और अपरिहार्य हैं। विशेष रूप से वे हर नर और नारी के जन सामान्य सम्मान में जड़ित हैं, जहां हम उनकी प्रायोगिक परिणाम और नैतिक प्रभावों को पाते हैं, क्योंकि मानव अधिकारों की घोषणा करना अपने में व्यर्थ होगा यदि सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों और सभी लोगों के लिए उनके सम्मान को सुनिश्चित करने हेतु हर तरह के प्रयास नहीं किए जाते हों। इन सारे अधिकारों में सर्वप्रथम हमारे लिए जीवन का अधिकार आता है, जिसे हम गर्भ धारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक पाते हैं, जिसके बिना हम किसी दूसरे अधिकारों के क्रियान्वयन की असंभावना को पाते हैं। जब मूलभूत अधिकार से हमें वंचित किया जाता है, जैसे कि भ्रूण हत्या, निर्दोषों को मारना और यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु में हम पाते हैं, तो ये हमारे लिए वे सारे विकल्प हैं जिन्हें कलीसिया घोर रूप में गलत मानती है। श्रोताओं, हमारे समय में हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित हम मुख्यतः दो गंभीर खतरों को देखते हैं। पहला, हम इन अधिकारों को स्पष्ट रूप में औपचारिक अर्थ में घोषित पाते हैं, जबकि तकनीकी विकास की निरंतरता में मानव अधिकारों को हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन होता पाते हैं। दूसरा, वास्तव में जिसका मूलभूत आधार पहले में है, उसकी वैश्विकता की बुनियाद को पहचानने में नाकामयाबी है, क्योंकि हमने अपने फैसलों और कानूनों को स्थापित करने वाली मजबूत बुनियाद की तलाश छोड़ दी है। संत पापा फ्रांसिस हमें इस अंतिम तथ्य को सहज में नहीं लेने का आह्वान करते हैं। वे हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराते हैं कि जब कारण गंभीर रूप में मानवीय प्रकृति की जांच करते, तो वे मूल्यों की खोज करने के योग्य होते हैं जो सभंग में लागू होता है, क्योंकि वे मानवीय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि खोज का यह कार्य छोड़ दिया जाता है, तो वे अधिकार जिन्हें आज अपरिहार्य समझा जाता है, भविष्य में उन लोगों द्वारा नकारा या सवाल स्वरूप पूछा जा सकता है जो सत्ता में हैं, शायद केवल उस आबादी से दिखावटी सहमति प्राप्त करते हुए जो डरी हुई यह बहक गई है। श्रोताओं, हर मानव के मूल्य और उनके अधिकारों के प्रति एक गहरी सचेतना ने अल्पसंख्यक के अधिकारों के पहचान में वृद्धि लाई है। फिर भी अब तक हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता बाकी है कि बहुतों के अधिकारों, खासकर महिलाओं

रोजगार के अवसर, शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्वों और समाज जिस रूप में सुनता तथा नारियों के योगदान को महत्व देता है, जब तक इसमें खाई बनी रहती है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज सही और पूर्ण रूपेण महिलाओं को पुरुषों की भांति समान सम्मान देती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें की फेफड़े में गांठ की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शाम 8 बजे इसकी जानकारी दी कि पोप लियो के फेफड़े की गांठ को हटाने के लिए सर्जरी उम्मीद के मुताबिक समय और तरीके से पूरा हो गया। संत पापा अपने कमरे में लौट आए हैं। वैटिकन प्रेस ऑफिस ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा की। पोप लियो चौदहवें के रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती होने से पहले वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने पोप के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया और पोप की शांत चित्तता की तारीफ की। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हम सभी उनकी शांत चित्तता से विस्मित हुए। उन्होंने उस शांति का जिक्र किया जिसके साथ पोप ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपनी होने वाली सर्जरी के बारे बताया था। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि जैसा कि उन्होंने कहा है, यह शुरुआती चरण में है, इसलिए यह समस्या जल्द से जल्द हल हो सकती है। हमें पूरा भरोसा है। स्वाभाविक रूप से हम सभी अपनी प्रार्थनाओं और स्नेह द्वारा उनके साथ हैं। वैटिकन राज्य सचिव ने बतलाया कि उन्होंने सोमवार दोपहर को पोप लियो से बात की थी। उन्होंने कहा, हमने बहुत शांति से बात की। संत पिता सच में इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल हैं। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद कि तुरंत इसका पता चला और इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, आम तौर पर जब इन चीजों का समय पर पता चलता है तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। कार्डिनल ने पोप के लिए दुनिया भर के लोगों के प्यार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पोप लियो को हर कोई कितना प्यार करता है, उनकी तारीफ करता है और उन्हें फॉलो करता है, और लोगों को बढ़ावा दिया कि वे पोप के इस प्रक्रिया के दौरान अपना सामीप्य दिखाते रहें। एक पत्रकार ने पूछा, क्या यह अचानक हुआ? कार्डिनल परोले ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा पोप ने कहा, यह ईश्वर का आश्चर्य है। सोमवार को टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल इसाओ किकोची ने पोप के साथ अपनी निजी मुलाकात के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने बतलाया कि सुबह 9:30 बजे उन्हें कारितास इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के साथ पोप से मिलने का मौका मिला। कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने उन दोनों के साथ मुलाकात में व्यक्तिगत बातचीत की। कार्डिनल किकोची ने अंत में कहा, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि यह छोटी सी

चली है और उन्हें अपने शरीर में कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा है। और कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी यात्रा की अपनी योजना बदलने से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने का फैसला किया है। हमें पोप को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। इस दौरान दुनिया भर की कलीसियाओं के धर्मगुरु पोप लियो 14वें और उनके फेफड़े में छोटी स्थानीयकृत गांठ को हटाने के लिए सर्जरी में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष सारा मुलायली ने एक्स पर आश्वासन दिया कि वे पोप लियो के लिए दुआ करेंगी और ईश्वर से उनकी सुरक्षा, सामीप्य और देखभाल के लिए प्रार्थना की। वेस्टमिनिस्टर के महाधर्माध्यक्ष और इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड मोथ ने भी विशेष प्रार्थना की अपील की। भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने पूरे देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, इस समय आइए हम अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक एकजुटता के जरिए संत पिता के प्रति अपना सामीप्य दिखाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनकी सफल सर्जरी, जल्द ठीक होने, अच्छी सेहत और नई ऊर्जा के लिए हमारे धर्म प्रांतों, पल्लियों, धर्म संघी समुदायों और संस्थानों में विशेष प्रार्थनाएं की जाएं। आइए हम पौत्र मिस्सा के दौरान और विश्वासों की प्रार्थना में भी संत पिता के लिए विशेष मतलब शामिल करें। जब हम पौत्र रोजरी के महीने में हैं, आइए हम अपनी दैनिक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं में पोप लियो 14वें को याद करें, खासकर पौत्र रोजरी माला विनती के माध्यम से। कलीसिया की धन्य कुंवारी मरियम, प्यार से उनके लिए प्रार्थना करें और इलाज एवं ठीक होने के इस समय में उनका साथ दें। और इसी तरह थाईलैंड, फिलीपींस एवं अमेरिका के धर्माध्यक्ष भी अपने विश्वासियों के साथ पोप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पोप लियो की सर्जरी की तैयारी के दौरान रोम के विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना जेमेली अस्पताल में रोजरी विनती का नेतृत्व करेंगे और पोप के अगुस्तीनी साथी रोम के निकट माता मरियम तीर्थस्थल में प्रार्थना के लिए एकत्रित होंगे। रोम धर्म प्रांत के लिए पोप के प्रेरित विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना शाम 6 बजे अस्पताल के सेंट जॉन पॉल द्वितीय चैपल में रोजरी माला विनती का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने संत पिता को कुंवारी मरियम की ममता में मध्यस्थता को सौंपते हुए धर्म प्रांत के प्रत्येक पल्ले और धर्म संघी समुदाय को एक ही समय में रोजरी माला विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। जेमेली की प्रार्थना वैटिकन मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित की जाएगी और यह हमारे वैटिकन न्यूज यूट्यूब चैनल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पोप के अगुस्तीनी साथियों ने भी विश्वासियों को उनकी सेहत एवं उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लोस कास्टिलो ने पोप की सर्जरी की घोषणा के तुरंत बाद लीमा में लास नाजरेनास तीर्थस्थल में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। पोप लियो के पुराने धर्म प्रांत चिकलायो में सोमवार शाम को महागिरजाघर में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता धर्माध्यक्ष एडिनसन फारफान कोटोवा ने की और पूरे अफ्रीका में किनशासा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अम्बोंगो, जो अफ्रीका एवं मडागास्कर के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघों और लोक धर्मियों को प्रार्थना में एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया है। क्यूबेक के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जेराल सिप्रियन लाइक्रक्स ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कलीसिया को परिवारों और दंपतियों के लिए उपस्थित रहने की जरूरत है। यह बात वैटिकन की नवीनतम प्रेस ब्रीफिंग में हुई जिसको अमोरिस लेतित्सिया के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार विषय पर किया गया। इस मीटिंग को पोप लियो 14वें ने प्रेरितिक प्रबोधन की 10वीं सालगिरह पर बुलाई है। मीटिंग जिसमें पोप लियो 14वें, पूर्वी कलीसिया के प्रमुख, धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष, विवाहित जोड़े और विशेषज्ञ शामिल रहे, बुधवार 14 अक्टूबर को समाप्त होगी ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों का बेहतर तरीके से साथ कैसे दे सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। श्रोताओं, मैनिफिका ह्यूमानिटास का दूसरा अध्याय हमारे लिए सामाजिक धर्म शिक्षा के मूलभूत आधार और सिद्धांतों की चर्चा करता है। जब हम सम्मान की बात कहते हैं तो हम इस शब्द का उपयोग सदैव उसी तरह से नहीं करते हैं। कभी कभी हम उसे नैतिक मानवीय सम्मान के रूप में उपयोग करते हैं, मुख्यतः उस रूप में जहां एक व्यक्ति अपने कार्य या कार्य करने के विकल्पों का चुनाव करता है। वहीं दूसरी जगह में हम सामाजिक सम्मान के बारे में विचार करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने की परिस्थितियों और समाज में ठोस रूप से मिलने वाले सम्मान को व्यक्त करता है। वहीं दूसरे परिदृश्यों में हम इसका उपयोग अस्तित्वगत सम्मान के रूप में करते हैं। कहने का अर्थ, जिस रूप में व्यक्ति अपने अस्तित्व को देखता और जीवन के मूल्य को समझता है, सम्मान के इस रूपों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इन विचारों के अलावे हम अस्तित्व विषयक सम्मान की गहराई और महत्वपूर्ण स्तर को भी पाते हैं। यह वह सम्मान है जो हर मानव के जीवन का हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसे जीवन प्राप्त है। ईश्वर उसकी चाह रखते, उसकी सृष्टि करते और उससे प्रेम करते हैं। कोई भी पाप, असफलता, अपमान या परित्याग एक मानव के वृहद जीवन मूल्य को कम नहीं कर सकता है, जिसकी चाह ईश्वर करते, जिसे उन्होंने अपने समान गढ़ा है। श्रोताओं, इस भांति हर मानव का मूलभूत सम्मान ना तो अपने में हासिल किया जा सकता और ना ही कमाया जा सकता है, और ना ही हमें इसे न्यायसंगत घोषित करने की जरूरत है। हाल ही की घोषणा दिनितास इन्फिनिता इस विषय पर कलिस्से के विचारों को संक्षेपित करती है। हर मानव अपने में एक अद्वितीय सम्मान को वहन करता है जो उसके अस्तित्व का अटूट हिस्सा है और जो हर परिस्थिति, अवस्था या हालात में बना रहता है, जिसका सामना वह व्यक्ति कभी भी, दूसरे शब्दों में, सदैव और बिना किसी अपवाद के कर सकता है। हर मानव का सम्मान दो कारणों से अनंत रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं। पहला, ईश्वरीय प्रेम के कारण जो हमें अपने संग मित्रता हेतु बुलाते हैं, यह अनंत है। और दूसरा, उनका प्रेम जो हमारे लिए पूर्ण रूपेण शर्तहीन है और हम अपनी ओर से कितनी भी कोशिश कर लें तो भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इसे मिटा सकती या हमें इससे अलग कर सकती है। श्रोताओं, कलिसिया कृतज्ञता पूर्ण ढंग से यह स्वीकार करती है कि मानवीय अधिकारों को पहचान प्रदान करना और उसे घोषित करना मानवीय गरिमा की अपरिहार्य मांगों का प्रभावकारी ढंग से जवाब देने के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। इस संदर्भ में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा कि मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, जिसे संयुक्त राष्ट्रों ने 10 दिसंबर 1948 में की, वर्तमान समय में हमारे लिए मानवीय चेतना की एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। यह मानवता के लंबे और कठिन मार्ग में मील का एक पत्थर है। यही कारण है कि ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से मानव अधिकार कोई बाह्य रूप से मानव से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह मानव सम्मान की एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया जाता है। मानव अधिकार अपने में अखंडनीय है, क्योंकि वे मानव के जीवन और मानवीय सम्मान में निहित हैं। यही कारण है कि वे अपने में वैश्विक और अपरिहार्य हैं। विशेष रूप से वे हर नर और नारी के जन सामान्य सम्मान में जड़ित हैं, जहां हम उनके प्रायोगिक परिणाम और नैतिक प्रभावों को पाते हैं, क्योंकि मानव अधिकारों की घोषणा करना अपने में व्यर्थ होगा यदि सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों और सभी लोगों के लिए उनके सम्मान को सुनिश्चित करने हेतु हर तरह के प्रयास नहीं किए जाते हों। इन सारे अधिकारों में सर्वप्रथम हमारे लिए जीवन का अधिकार आता है, जिसे हम गर्भ धारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक पाते हैं, जिसके बिना हम किसी दूसरे अधिकारों के क्रियान्वयन की असंभावना को पाते हैं। जब मूलभूत अधिकार से हमें वंचित किया जाता है, जैसे कि भ्रूण हत्या, निर्दोषों को मारना और यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु में हम पाते हैं, तो ये हमारे लिए वे सारे विकल्प हैं जिन्हें कलीसिया घोर रूप में गलत मानती है। श्रोताओं, हमारे समय में हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित हम मुख्यतः दो गंभीर खतरों को देखते हैं। पहला, हम इन अधिकारों को स्पष्ट रूप में औपचारिक अर्थ में घोषित पाते हैं, जबकि तकनीकी विकास की निरंतरता में मानव अधिकारों को हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन होता पाते हैं। दूसरा, वास्तव में जिसका मूलभूत आधार पहले में है, उसकी वैश्विकता की बुनियाद को पहचानने में नाकामयाबी है, क्योंकि हमने अपने फैसलों और कानूनों को स्थापित करने वाली मजबूत बुनियाद की तलाश छोड़ दी है। संत पापा फ्रांसिस हमें इस अंतिम तथ्य को सहज में नहीं लेने का आह्वान करते हैं। वे हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराते हैं कि जब कारण गंभीर रूप में मानवीय प्रकृति की जांच करते, तो वे मूल्यों की खोज करने के योग्य होते हैं जो सभंग में लागू होता है, क्योंकि वे मानवीय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि खोज का यह कार्य छोड़ दिया जाता है, तो वे अधिकार जिन्हें आज अपरिहार्य समझा जाता है, भविष्य में उन लोगों द्वारा नकारा या सवाल स्वरूप पूछा जा सकता है जो सत्ता में है, शायद केवल उस आबादी से दिखावटी सहमति प्राप्त करते हुए जो डरी हुई या बहक गई है। श्रोताओं, हर मानव के मूल्य और उनके अधिकारों के प्रति एक गहरी सचेतना ने अल्पसंख्यक के अधिकारों के पहचान में वृद्धि लाई है। फिर भी अब तक हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता बाकी है कि बहुतों के अधिकारों, खासकर महिलाओं के लिए, पूरी दुनिया में समानता और वास्तविक गारंटी दी जाती हो। यह वास्तव में एक सच्चाई है कि दोहरी गरीबी के शिकार वे नारियां हैं जिन्हें परित्याग की स्थिति, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे निरंतर अपने अधिकारों की रक्षा करने में अयोग्य होती हैं। इसलिए यह कहना अपने में पर्याप्त नहीं है, नर और नारियों को बराबर का सम्मान और अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए यह जरूरी है कि यह हमारे ठोस निर्णयों में परिलक्षित हो, जैसे कि कानूने, रोजगार के अवसर, शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्वों और समाज जिस रूप में सुनता तथा नारियों के योगदान को महत्व देता है। जब तक इसमें खाई बनी रहती है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज सही और पूर्ण रूपेण महिलाओं को पुरुषों की भांति समान सम्मान देती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें की फेफड़े में गांठ की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शाम 8 बजे इसकी जानकारी दी कि पोप लियो के फेफड़े की गांठ को हटाने के लिए सर्जरी उम्मीद के मुताबिक समय और तरीके से पूरा हो गया। संत पापा अपने कमरे में लौट आए हैं। वैटिकन प्रेस ऑफिस ने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा की। पोप लियो चौदहवें के रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती होने से पहले वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने पोप के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया और पोप की शांत चित्तता की तारीफ की। कार्डिनल परोलिन ने कहा, हम सभी उनकी शांत चित्तता से विस्मित हुए। उन्होंने उस शांति का जिक्र किया जिसके साथ पोप ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपनी होने वाली सर्जरी के बारे बताया था। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि जैसा कि उन्होंने कहा है, यह शुरुआती चरण में है, इसलिए यह समस्या जल्द से जल्द हल हो सकती है। हमें पूरा भरोसा है। स्वाभाविक रूप से हम सभी अपनी प्रार्थनाओं और स्नेह द्वारा उनके साथ हैं। वैटिकन राज्य सचिव ने बतलाया कि उन्होंने सोमवार दोपहर को पोप लियो से बात की थी। उन्होंने कहा, हमने बहुत शांति से बात की। संत पिता सच में इस मामले में एक बेहतरीन मिसाल हैं। कार्डिनल परोलिन ने कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद कि तुरंत इसका पता चला और इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, आमतौर पर जब इन चीजों का समय पर पता चलता है तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। कार्डिनल ने पोप के लिए दुनिया भर के लोगों के प्यार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पोप लियो को हर कोई कितना प्यार करता है, उनकी तारीफ करता है और उन्हें फॉलो करता है, और लोगों को बढ़ावा दिया कि वे पोप के इस प्रक्रिया के दौरान अपना सामीप्य दिखाते रहें। एक पत्रकार ने पूछा, क्या यह अचानक हुआ? कार्डिनल परोलिन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा पोप ने कहा, यह ईश्वर का आश्चर्य है। सोमवार को टोक्यो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल इसाओ किकोची ने पोप के साथ अपनी निजी मुलाकात के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने बतलाया कि सुबह 9:30 बजे उन्हें कारितास इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के साथ पोप से मिलने का मौका मिला। कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने उन दोनों के साथ मुलाकात में व्यक्तिगत बातचीत की। कार्डिनल किकोची ने अंत में कहा, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि यह छोटी सर्जरी है और उन्हें अपने शरीर में कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा है। और कार्डिनल ने कहा कि उन्होंने लैटिन अमेरिकी यात्रा की अपनी योजना बदलने से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने का फैसला किया है। हमें पोप को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। इस दौरान दुनिया भर की कलीसियाओं के धर्मगुरु पोप लियो चौदहवें और उनके फेफड़े में छोटी स्थानीयकृत गांठ को हटाने के लिए सर्जरी में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष सारा मुलायली ने एक्स पर आश्वासन दिया कि वे पोप लियो के लिए दुआ करेंगी और ईश्वर से उनकी सुरक्षा, सामीप्य और देखभाल के लिए प्रार्थना की। वेस्टमिनिस्टर के महाधर्माध्यक्ष और इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रिचर्ड मोथ ने भी विशेष प्रार्थना की अपील की। भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने पूरे देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो चौदहवें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, इस समय आइए हम अपनी प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक एकजुटता के जरिए संत पिता के प्रति अपना सामीप्य दिखाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनकी सफल सर्जरी, जल्द ठीक होने, अच्छी सेहत और नई ऊर्जा के लिए हमारे धर्म प्रांतों, पल्लियों, धर्म संघी समुदायों और संस्थानों में विशेष प्रार्थनाएं की जाएं। आइए हम पौत्र मिसा के दौरान और विश्वासों की प्रार्थना में भी संत पिता के लिए विशेष मतलब शामिल करें। जब हम पौत्र रोजरी के महीने में हैं, आइए हम अपनी दैनिक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं में पोप लियो चौदहवें को याद करें, खासकर पौत्र रोजरी माला विनती के माध्यम से। कलीसिया की धन्य कुंवारी मरियम, प्यार से उनके लिए प्रार्थना करें और इलाज एवं ठीक होने के इस समय में उनका साथ दें। और इसी तरह थाईलैंड, फिलीपींस एवं अमेरिका के धर्माध्यक्ष भी अपने विश्वासियों के साथ पोप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
पोप लियो की सर्जरी की तैयारी के दौरान रोम के विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना जेमेली अस्पताल में रोजरी विनती का नेतृत्व करेंगे और पोप के अगुस्तीनी साथी रोम के निकट माता मरियम तीर्थस्थल में प्रार्थना के लिए एकत्रित होंगे। रोम धम प्रांत के लिए पोप के प्रेरित विकर जनरल कार्डिनल वल्दासारे रीना शाम 6 बजे अस्पताल के सेंट जॉन पॉल द्वितीय चैपल में रोजरी माला विनती का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने संत पिता को कुंवारी मरियम की ममता में मध्यस्थता को सौंपते हुए धम प्रांत के प्रत्येक पल्ले और धम संघी समुदाय को एक ही समय में रोजरी माला विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। जेमेली की प्रार्थना वैटिकन मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित की जाएगी और यह हमारे वैटिकन न्यूज यूट्यूब चैनल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पोप के अगुस्तीनी साथियों ने भी विश्वासियों को उनकी सेहत एवं उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। लीमा के महाधर्मदोष कार्डिनल कार्लोस कास्टिलो ने पोप की सर्जरी की घोषणा के तुरंत बाद लीमा में लास नाजरेना तीर्थस्थल में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। पोप लियो के पुराने धम्म प्रांत चिकलायो में सोमवार शाम को महागिरजाघर में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी जिसकी अध्यक्षता धर्मदक्ष एडिनसन फारफान कोटोवा ने की और पूरे अफ्रीका में कंशासा के महाधर्मदक्ष कार्डिनल फ्रीडोलिन अम्बोंगो जो अफ्रीका एवं मडागास्कर के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, धर्मदक्षों पुरोहितों धर्म संघियों और लोक धर्मियों को प्रार्थना में एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया है। क्यूबेक के महाधर्मदक्ष कार्डिनल जेराल सिप्रियन लाइक्रक्स ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कलीसिया को परिवारों और दंपतियों के लिए उपस्थित रहने की जरूरत है। यह बात वैटिकन की नवीनतम प्रेस ब्रीफिंग में हुई जिसको अमोरिस लेतित्सिया के 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार विषय पर किया गया। इस मीटिंग को पोप लियो 14वें ने प्रेरितिक प्रबोधन की 10वीं सालगिरह पर बुलाई है। मीटिंग जिसमें पोप लियो 14वें पूर्वी कलीसिया के प्रमुख धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष विवाहित जोड़े और विशेषज्ञ शामिल रहे बुधवार 14 अक्टूबर को समाप्त होगी ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि कलीसिया आज परिवारों का बेहतर तरीके से साथ कैसे दे सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की

0: अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आमोरिस लेतित्सिय संगोष्ठी के समापन मिस्सा में कार्डिनल तागले द्वारा संत पापा का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा के प्रतिनिधि कार्डिनल अंतोनियो तागले ने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की 10वीं सालगिरह के अवसर पर वैटिकन में आयोजित धर्माधर्शकों की विशेष संगोष्ठी के समापन का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। कार्डिनल मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनियो तागले ने संत पापा लियो 14वें की ओर से पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान की अगुवाई करते हुए उनके प्रवचन को प्रस्तुत किया। परिवारों में प्रेम के आनंद की अनुभूति कलीसिया का भी आनंद है। अपने इन वचनों के द्वारा 10 साल पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की शुरुआत की थी। आज इस यूखारिस्तीय बलिदान के अनुष्ठान में हम ईश्वर को इस दस्तावेज द्वारा मिले फलों के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं और हम ईश्वर से याचना करते हैं कि हम इसके समृद्धियों को अपने हृदयों में वहन कर सकें तथा उन्हें अपनी प्रेरिताई में लागू कर सकें। प्रथम पाठ में हम प्रेम के संगीत को पाते हैं। आमोरिस लेतित्से का 4वां अध्याय हमारे लिए इसी पद की चर्चा करता और हमें ख्रिस्तीय विवाह के गुणों पर चिंतन करने का आह्वान करता है। एक मिलन जो आध्यात्मिक और बलिदान के रूप में प्रभावकारी है, जो ईश्वरीय प्रेम की निशानी है। उन गुणों को जीने के द्वारा और कृपा की मदद से दंपत्ति प्रतिदिन अपने को त्रित्वमय ईश्वर के चिन्हों में विकसित करते हैं। दोनों दंपत्ति विशेष रूप से अपनी परिपक्वता को प्राप्त करते और पूरी जिंदगी को मिलकर जीने और उसे आकार देने के पक्के संकल्प में एक दूसरे के जीवन को परिलक्षित करते हैं। इस भांति सच्चे प्रेम का आनंद धीरे धीरे एक गहरे मिलन में बदलता है, जिसमें हर व्यक्ति की अद्वितीयता एक दूसरे की उपस्थिति और अपने को देने में निखरती है। संत पौलुस उस समुदाय को संबोधित करते हैं जो समृद्ध उपहारों और आदर्शों से भरा था, यद्यपि उन्हें प्रेम में परिपक्व होने की जरूरत थी। उन्होंने कुरिन्थ समुदाय को याद दिलाया, प्रेम के बिना व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अपने में खन खानाती या झुनझुनाती घड़ियाल की भांति है। अपने विचारों में संत पापा लियो ने कहा कि हम उस तरह जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। आज का स्तोत्र भी हमें ईश्वर के निष्ठामय प्रेम में सदैव बने रहने का आह्वान देता है, जिसकी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वे वह ईश्वर हैं जो हमें बिना रोक टोक प्रेम करते हैं, जो हमें खोजना कभी नहीं छोड़ते हैं। वे हमारे ऊपर विश्वास करते और हमारे संग अपनी मित्रता को नवीन करते हैं। यह वह प्रेम है जिसे आमोरिस लेतित्से हमें परिवारों की नींव बनाने हेतु निमंत्रण देता है। यह वह सच्चा प्रेम है जिसे विशेष रूप में हमें उन युवाओं को बतलाना है जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं। हमें उन्हें इन गुणों की महत्ता के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है, जिसमें शुद्धता का एक विशेष स्थान है जो दो लोगों के बीच सच्चे प्रेम में बढ़ने हेतु मूल्यवान है। विवाह की तैयारी हेतु पल्लियों में आयोजित कार्यक्रम अपने में सराहनीय हैं, फिर भी वे कार्यक्रम अपने में काफी नहीं है। उनमें प्रेम की शिक्षा देने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति को बचपन से ही विकसित होने में मदद करता है। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराया है, किसी में प्रेम करना स्वतः ही नहीं होता है, ना ही हम इसे एक सेमिनार में विवाह के पूर्व सिखा सकते हैं। वे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, हर दंपत्ति के लिए विवाह की तैयारी जन्म से शुरू होती है और हर चीज जिसे एक युवा अपने परिवार के अंदर अनुभव करता है उसे एक व्यक्ति के रूप में एक पूर्ण और निश्चित समर्पण के योग्य बनाता है। इस भांति प्रेम जिसे हम परिवार के अंदर जीते हैं, अपने संघर्ष, गलतियों और असफलताओं के क्षणों में अपनी अप्रत्याशित चमत्कार, हर दिन के जीवन में प्रेम के आनंद, मानवीय स्नेह की प्रथम पाठशाला पहली मूल्यवान और बेजोड़ सीख बनती है। यही कारण है कि हमें बहुत सारे परिवारों का सहयोग और प्रयासों को पहचान प्रदान करने की जरूरत है, जो रोज दिन अपनी प्रेरिताई और बुलाहट को बिना किसी धूमधाम के यद्यपि वीरतापूर्ण निष्ठा में जीते हैं। वे हमारे लिए एक उदारतापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे हमने यीशु ख्रिस्त के वचनों में सुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। माता पिता, बच्चों, नाना नानियों, युवाओं और बुजुर्गों के साक्ष्य द्वारा सुसमाचार का सच्चा संदेश और जीवन की परिपूर्णता विश्व में प्रसारित होती है। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें यीशु के सरल और स्पष्ट निर्देश, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में दिया, प्रस्तुत करते हैं। यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। हम इसका अभ्यास अपने जीवन में करें, जिससे हम ईश्वर की कलीसिया स्वरूप, परिवारों के परिवार स्वरूप विकास कर सकें, जहां सेवा का आदान प्रदान सबों की भलाई होती है। इस भांति युवा दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन के शुरू में प्रोत्साहन का अनुभव करेंगे। माता पिता को सहायता की अनुभूति होगी, क्योंकि वे अपने संतानों की परवरिश और परिवार के संचालन में चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बुजुर्गों को अपनी भूमिका के लिए मूल्यवान होने की अनुभूति होगी, क्योंकि शारीरिक कमजोरियों के बावजूद वे अपने अनुभवों और गुणों को साझा करते हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति में वे जो अधिक क्षणभंगुर हैं या कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, वे भी अपने में सहायता और प्रोत्साहन को पाएंगे। हम इस बात को याद करें कि चाहे परिवार कितना भी घायल क्यों ना हो, वे प्रेम में सदैव एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के लिए खुलापन और उसका सम्मान गर्भ से लेकर मृत्यु तक, हम इसे करुणा में जड़ित पाते हैं, जो मानव के रूप में हमारे जीवन के अस्तित्व का मूलभूत आधार है। परिवार इन मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक और मानवता की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी ऐसा मिलन जो अस्थायी हो या जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद ना करता हो, समाज के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता है। बच्चों को ईश्वर का उपहार मानने वाले और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान देने वाले मजबूत परिवारों के बिना दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। संत पापा ने यीशु के निमंत्रण में एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, पिता से मेरे नाम में मांगने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा। ये वाक्य हमें इस बात की याद दिलाती है कि परिवार प्रार्थना का एक मुख्य स्थल है। दुख की बात है कि विश्व के विभिन्न स्थानों में गिरावट आई है। आमोरिस लेतिट से हमें याद दिलाता है कि हमें परिवारों में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता, प्रार्थना और रविवारीय यूखरिस्त में सहभागिता पर ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक प्रार्थना और संस्कार पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में वे हमारे पोषण और चंगाई की ठोस दवाइयां समान हैं। इसलिए मैं सभी से दृढ़ता पूर्वक अपील करता हूं कि हम इन तौर तरीकों को फिर से अपनाएं और उन्हें बढ़ावा दें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि पोप लियो 14वें की रोम के जेमेली अस्पताल में पहली रात शांति से बीती, जहां उनका फेफड़े का ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुआ। प्रेस कार्यालय ने बुधवार को कहा, पोप के लिए रात शांति से बीती, आज बाद में और जानकारी दी जाएगी। पोप लियो 14वें की सर्जरी जेमेली अस्पताल में हुई है। मंगलवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सर्जनों ने पोप के दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा निकाल दिया। बयान में कहा गया, पूरी तरह निकालने के लिए दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा वीडियो असिस्टेंट तकनीक का इस्तेमाल करके निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान जांचे गए उत्तक के पहले किए गए टेस्ट से संदेह के अनुसार निदान की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के दौरान की गई उत्तक जांच ने फेफड़ों के कैंसर के निदान की पुष्टि की, जैसा कि ऑपरेशन से पहले के जांचों से संदेह था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट चला। डॉक्टरों ने कहा कि यह सफल रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। बयान के अनुसार पोप लियो सर्जरी के बाद सामान्य तरीके से चेतना में आए और थोड़ी देर निगरानी में रहने के बाद अस्पताल की 10वीं मंजिल पर अपने कमरे में आए। वैटिकन प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता मत्तेव ब्रूनी के अनुसार ऑपरेशन के बाद पोप लियो ने शाम का भोजन लेने की इच्छा जाहिर की और शाम अपने सचिव एवं दूसरे वैटिकन स्टाफ के साथ बिताई। आने वाले दिनों में निकाले गए उत्तक पर ऑपरेशन के बाद की जाँच की जाएगी। ऑपरेशन से पहले के टेस्ट में डॉक्टरों को पहले ही पता चल गया था कि कहां और कैसे ऑपरेशन करना है। बताया गया है कि पोप 1 हफ्ता तक अस्पताल में रहेंगे और इस बीच संत पापा के लिए पूरे विश्व से प्रार्थना की जा रही है। भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने पूरे देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, प्रभु संत पिता को चंगा करें, शांति दें और उन्हें विश्वव्यापी कलीसिया की देखभाल करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी एक साथ की गई प्रार्थनाएं संत पेतरस के उत्तराधिकारी के लिए हमारा पुत्र तुलियस ने कलीसिया के साथ सहभागिता और आध्यात्मिक सामिप्य की सच्ची अभिव्यक्ति हो। पोप लियो 14वें ने 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती होने से पहले परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को एक संदेश भेजा और सभी लोगों एवं संस्थाओं से शांति को बचाने और बढ़ावा देने हेतु अपना सहयोग देने की अपील की। पोप ने संदेश में लिखा, शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है और साथ ही यह एक ऐसा मिशन है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में धैर्यपूर्वक पूरा करना होगा। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को वैटिकन जॉन पॉल प्रथम फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल पियत्रो परोलिन को एक संदेश भेजा। यह संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित जॉन पॉल प्रथम यूस्टिसिया एट पैक्स इस परेशान दुनिया में शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को दिया गया। पोप ने सम्मेलन के आयोजकों, वक्ताओं और उनके प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में हो रही इस मीटिंग के अच्छे परिणामों के लिए बधाई दी। पोप ने कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु मानवता के भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है, जिसका ध्यान हर एक व्यक्ति के लिए शांति बनाने की जिम्मेदारी पर है। पोप फ्रांसिस का जिक्र करते हुए, जिन्होंने जोर दिया था कि शांति सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है। पोप लियो ने आगे कहा कि संत अगस्टीन शांति को प्रशांति और व्यवस्था का फल बताते हैं, यह दोहराते हुए कि शांति के लिए हर इंसान की प्रतिष्ठा और बुनियादी अधिकारों का सम्मान साथ ही लोगों के बीच एकजुटता जरूरी है। पोप लियो ने जोर देकर कहा, इस दृष्टिकोण से न्याय एक जरूरी शर्त बन जाता है। जॉन पॉल प्रथम की सीख हमें पक्की शांति पाने के लिए आमंत्रित करती है। पोप ने आगे याद दिलाया कि धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम ने अपनी आसान एवं सरल भाषा में भरोसे पर आधारित मानवीय रिश्ते बनाने में व्यक्तिगत सहभागिता, भाईचारा और उदारता की आवश्यकता पर जोर दिया था। पोप लियो ने कहा कि यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति परिवार, स्कूल एवं समुदाय में शुरू होती है
और फिर संस्थाओं तक पहुंचती है। इस दृष्टिकोण से पोप ने कहा कि जॉन पॉल प्रथम की शिक्षा आज भी फिर से विचार किया जाना चाहिए और इसे शांति को एक अमूर्त विचार न मानने का बुलावा बताया, जिसे सिर्फ उन लोगों को सौंपा नहीं गया है जिन पर देशों के बीच स्थिरता और सामाजिक मेल जोल पक्का करने की बड़ी जिम्मेदारी है। संत पापा ने जोर देकर कहा, बुरी तरह हिली हुई दुनिया में शांति को बचाने और बढ़ावा देने का मतलब है जो विभाजित है उसे ठीक करना, सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करना, माफ करना और समझना, दूसरों की बात सुनना एवं उन्हें पहचानना, लोगों को सच्ची बातचीत के लिए प्रेरित करना तथा भाईचारा शब्द को पुनः एक बार ठोस कलीसियाई सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू देना। पोप लियो ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि चिंतन का यह दिन पोप जॉन पॉल प्रथम के प्रेरित कार्य एवं धर्म शिक्षा की समझ को गहरा करने का एक अच्छा अवसर साबित हो। पोप ने अंत में सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कस्तेल गंदोल्फो के लाउदातो सी विलेज में विलानोवा यूनिवर्सिटी से पोप लियो 14वें की स्थिरता पदक प्राप्त की और मानवता से अपील की कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीरता से काम करें। कार्डिनल चर्नी ने पदक प्राप्त करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर को, आप सभी को और मेरे माता पिता को धन्यवाद, जिनके प्रकृति के प्रति प्रेम एवं पुनः चक्रण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने मुझ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, और उन सभी का शुक्रिया जो गरीबों और धरती की पुकार सुनते हैं। 13 अक्टूबर की शाम को विलानोवा यूनिवर्सिटी ने कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे विल्ला में लाउदातो सी गांव में हुए एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक से सम्मानित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता पदक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे 2026 में विलानोवा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। यह उन लोगों को पहचान देता है जो पर्यावरण की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, सबसे कमजोर लोगों की देखभाल और संसाधनों की भली भांति देखभाल करने में नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो।

संत पापा की प्रतिनिधि कार्डिनल अंतोनियो तागले ने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की 10वीं सालगिरह के अवसर पर वैटिकन में आयोजित धर्माधीक्षकों की विशेष संगोष्ठी के समापन का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। कार्डिनल मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनियो तागले ने संत पापा लियो 14वें की ओर से पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान की अगुवाई करते हुए उनके प्रवचन को प्रस्तुत किया। परिवारों में प्रेम के आनंद की अनुभूति कलिस्य का भी आनंद है। अपने इन वचनों के द्वारा 10 साल पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने अपने प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतित्से की शुरुआत की थी। आज इस यूखारिस्तीय बलिदान के अनुष्ठान में हम ईश्वर को इस दस्तावेज द्वारा मिले फलों के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं और हम ईश्वर से याचना करते हैं कि हम इसकी समृद्धियों को अपने हृदयों में वहन कर सकें तथा उन्हें अपनी प्रेरिताई में लागू कर सकें। प्रथम पाठ में हम प्रेम के संगीत को पाते हैं। आमोरिस लेतित्से का 4वां अध्याय हमारे लिए इसी पद की चर्चा करता और हमें ख्रिस्तीय विवाह के गुणों पर चिंतन करने का आह्वान करता है। एक मिलन जो आध्यात्मिक और बलिदान के रूप में प्रभावकारी है, जो ईश्वरीय प्रेम की निशानी है। उन गुणों को जीने के द्वारा और कृपा की मदद से दंपत्ति प्रतिदिन अपने को त्रित्वमय ईश्वर के चिन्हों में विकसित करते हैं। दोनों दंपत्ति विशेष रूप से अपनी परिपक्वता को प्राप्त करते और पूरी जिंदगी को मिलकर जीने और उसे आकार देने के पक्के संकल्प में एक दूसरे के जीवन को परिलक्षित करते हैं। इस भांति सच्चे प्रेम का आनंद धीरे धीरे एक गहरे मिलन में बदलता है, जिसमें हर व्यक्ति की अद्वितीयता एक दूसरे की उपस्थिति और अपने को देने में निखरती है। संत पौलुस उस समुदाय को संबोधित करते हैं जो समृद्ध उपहारों और आदर्शों से भरा था। यद्यपि उन्हें प्रेम में परिपक्व होने की जरूरत थी, उन्होंने कुरिन्थ समुदाय को याद दिलाया, प्रेम के बिना व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अपने में खन खानाती या झुनझुनाती घड़ियाल की भांति है। अपने विचारों में संत पापा लियो ने कहा कि हम उस तरह जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। आज का स्तोत्र भी हमें ईश्वर के निष्ठामय प्रेम में सदैव बने रहने का आह्वान देता है, जिसकी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। वे वह ईश्वर हैं जो हमें बिना रोक टोक प्रेम करते हैं, जो हमें खोजना कभी नहीं छोड़ते हैं। वे हमारे ऊपर विश्वास करते और हमारे संग अपनी मित्रता को नवीन करते हैं। यह वह प्रेम है जिसे आमोरिस लेतित्से हमें परिवारों की नींव बनाने हेतु निमंत्रण देता है। यह वह सच्चा प्रेम है जिसे विशेष रूप में हमें उन युवाओं को बतलाना है जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं। हमें उन्हें इन गुणों की महत्ता के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है, जिसमें शुद्धता का एक विशेष स्थान है जो दो लोगों के बीच सच्चे प्रेम में बढ़ने हेतु मूल्यवान है। विवाह की तैयारी हेतु पल्लियों में आयोजित कार्यक्रम अपने में सराहनीय हैं, फिर भी वे कार्यक्रम अपने में काफी नहीं है। उनमें प्रेम की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो व्यक्ति को बचपन से ही विकसित होने में मदद करता है। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराया है, किसी में प्रेम करना स्वतः ही नहीं होता है, ना ही हम इसे एक सेमिनार में विवाह के पूर्व सिखा सकते हैं। वे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, हर दंपत्ति के लिए विवाह की तैयारी जन्म से शुरू होती है और हर चीज जिसे एक युवा अपने परिवार के अंदर अनुभव करता है, उसे एक व्यक्ति के रूप में एक पूर्ण और निश्चित समर्पण के योग्य बनाता है। इस भांति प्रेम जिसे हम परिवार के अंदर जीते हैं, अपने संघर्ष गलतियों और असफलताओं के क्षणों में अपनी अप्रत्याशित चमत्कार, हर दिन के जीवन में प्रेम के आनंद, मानवीय स्नेह की प्रथम पाठशाला पहली मूल्यवान और बेजोड़ सीख बनती है। यही कारण है कि हमें बहुत सारे परिवारों का सहयोग और प्रयासों को पहचान प्रदान करने की जरूरत है, जो रोज दिन अपनी प्रेरिताई और बुलाहट को बिना किसी धूमधाम के यद्यपि वीरतापूर्ण निष्ठा में जीते हैं।

वे हमारे लिए एक उदारतापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे हमने यीशु ख्रिस्त के वचनों में सुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। माता पिता बच्चों नाना नानियों युवाओं और बुजुर्गों के साक्ष्य द्वारा सुसमाचार का सच्चा संदेश और जीवन की परिपूर्णता विश्व में प्रसारित होती है। सुसमाचार लेखक संत योहन हमें यीशु के सरल और स्पष्ट निर्देश जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में दिया प्रस्तुत करते हैं। यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। हम इसका अभ्यास अपने जीवन में करें जिससे हम ईश्वर की कलीसिया स्वरूप परिवारों के परिवार स्वरूप विकास कर सकें, जहां सेवा का आदान प्रदान सबों की भलाई होती है। इस भांति युवा दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन के शुरू में प्रोत्साहन का अनुभव करेंगे। माता पिता को सहायता की अनुभूति होगी क्योंकि वे अपने संतानों की परवरिश और परिवार के संचालन में चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बुजुर्गों को अपनी भूमिका के लिए मूल्यवान होने की अनुभूति होगी क्योंकि शारीरिक कमजोरियों के बावजूद वे अपने अनुभवों और गुणों को साझा करते हैं। इस प्रेम की अभिव्यक्ति में वे जो अधिक क्षणभंगुर हैं या कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, वे भी अपने में सहायता और प्रोत्साहन को पाएंगे। हम इस बात को याद करें कि चाहे परिवार कितना भी घायल क्यों ना हो, वे प्रेम में सदैव एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन के लिए खुलापन और उसका सम्मान गर्भ से लेकर मृत्यु तक, हम इसे करुणा में जड़ित पाते हैं जो मानव के रूप में हमारे जीवन के अस्तित्व का मूलभूत आधार है। परिवार इन मूल्यों का सबसे बड़ा संरक्षक और मानवता की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक है। इस संबंध में संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी ऐसा मिलन जो अस्थायी हो या जो जीवन को आगे बढ़ाने में मदद ना करता हो, समाज के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता है। बच्चों को ईश्वर का उपहार मानने वाले और उनकी शिक्षा व विकास पर ध्यान देने वाले मजबूत परिवारों के बिना दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। संत पापा ने यीशु के निमंत्रण में एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, पिता से मेरे नाम में मांगने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा। ये वाक्य हमें इस बात की याद दिलाती है कि परिवार प्रार्थना का एक मुख्य स्थल है। दुख की बात है कि विश्व के विभिन्न स्थानों में गिरावट आई है। आमोरिस लेतित से हमें याद दिलाता है कि हमें परिवारों में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता, प्रार्थना और रविवारीय यूखारिस्त में सहभागिता पर ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक प्रार्थना और संस्कार पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में वे हमारे पोषण और चंगाई की ठोस दवाइयां समान हैं। इसलिए मैं सभी से दृढ़ता पूर्वक अपील करता हूं कि हम इन तौर तरीकों को फिर से अपनाएं और उन्हें बढ़ावा दें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि पोप लियो 14वें की रोम के जेमेली अस्पताल में पहली रात शांति से बीती, जहां उनका फेफड़े का ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के संपन्न हुआ। प्रेस कार्यालय ने बुधवार को कहा, पोप के लिए रात शांति से बीती, आज बाद में और जानकारी दी जाएगी। पोप लियो 14वें की सर्जरी जेमेली अस्पताल में हुई है। मंगलवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सर्जनों ने पोप के दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा निकाल दिया। बयान में कहा गया, पूरी तरह निकालने के लिए दाहिने फेफड़े का निचला हिस्सा वीडियो असिस्टेंट तकनीक का इस्तेमाल करके निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान जांचे गए उत्तक के पहले किए गए टेस्ट से संदेह के अनुसार निदान की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के दौरान की गई उत्तक जांच ने फेफड़ों के कैंसर के निदान की पुष्टि की, जैसा कि ऑपरेशन से पहले के जांचों से संदेह था। पोप लगभग 3 घंटे तक ऑपरेशन रूम में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 90 मिनट चला। डॉक्टरों ने कहा कि यह सफल रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। बयान के अनुसार पोप लियो सर्जरी के बाद सामान्य तरीके से चेतना में आए और थोड़ी देर निगरानी में रहने के बाद अस्पताल की 10वीं मंजिल पर अपने कमरे में आए। वैटिकन प्रेस कार्यालय के प्रवक्ता मत्तेव ब्रूनी के अनुसार ऑपरेशन के बाद पोप लियो ने शाम का भोजन लेने की इच्छा जाहिर की और शाम अपने सचिव एवं दूसरे वैटिकन स्टाफ के साथ बिताई। आने वाले दिनों में निकाले गए उत्तक पर ऑपरेशन की बात की जाँच की जाएगी। ऑपरेशन से पहले के टेस्ट में डॉक्टरों को पहले ही पता चल गया था कि कहां और कैसे ऑपरेशन करना है। बताया गया है कि पोप 1 हफ्ता तक अस्पताल में रहेंगे। और इस बीच संत पापा के लिए पूरे विश्व से प्रार्थना की जा रही है। भारत के कार्तिक धर्मध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने पूरे देश के महाधर्मध्यक्षों, धर्मध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघों, प्रचारकों और लोक धर्मियों के नाम एक पत्र जारी करते हुए पोप लियो 14वें के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, प्रभु संत पिता को चंगा करें, शांति दें और उन्हें विश्वव्यापी कलीसिया की देखभाल करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी एक साथ की गई प्रार्थनाएं संत पेतरस के उत्तराधिकारी के लिए हमारा पुत्र तुलियस ने कलीसिया के साथ सहभागिता और आध्यात्मिक सामीप्य की सच्ची अभिव्यक्ति हो। पोप लियो 14वें ने 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती होने से पहले परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को एक संदेश भेजा और सभी लोगों एवं संस्थाओं से शांति को बचाने और बढ़ावा देने हेतु अपना सहयोग देने की अपील की। पोप ने संदेश में लिखा, शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है और साथ ही यह एक ऐसा मिशन है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में धैर्यपूर्वक पूरा करना होगा। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को वैटिकन जॉन पॉल प्रथम फाउंडेशन के अध्यक्ष कार्डिनल पियत्रो परोलिन को एक संदेश भेजा। यह संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित जॉन पॉल प्रथम यूस्टिसिया एट पैक्स इस परेशान दुनिया में शांति की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को दिया गया। पोप ने सम्मेलन के आयोजकों, वक्ताओं और उनके प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही परमधम पीठे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी में हो रही इस मीटिंग के अच्छे परिणामों के लिए बधाई दी। पोप ने कहा कि इस सम्मेलन की विषय वस्तु मानवता के भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है, जिसका ध्यान हर एक व्यक्ति के लिए शांति बनाने की जिम्मेदारी पर है। पोप फ्रांसिस का जिक्र करते हुए, जिन्होंने जोर दिया था कि शांति सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है। पोप लियो ने आगे कहा कि संत अगस्टीन शांति को प्रशांति और व्यवस्था का फल बताते हैं। यह दोहराते हुए कि शांति के लिए हर इंसान की प्रतिष्ठा और बुनियादी अधिकारों का सम्मान साथ ही लोगों के बीच एकजुटता जरूरी है। पोप लियो ने जोर देकर कहा, इस दृष्टिकोण से न्याय एक जरूरी शर्त बन जाता है। जॉन पॉल प्रथम की सीख हमें पक्की शांति पाने के लिए आमंत्रित करती है। पोप ने आगे याद दिलाया कि धन्य पोप जॉन पॉल प्रथम ने अपनी आसान एवं सरल भाषा में भरोसे पर आधारित मानवीय रिश्ते बनाने में व्यक्तिगत सहभागिता, भाईचारा और उदारता की आवश्यकता पर जोर दिया था। पोप लियो ने कहा कि यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति परिवार, स्कूल एवं समुदाय में शुरू होती है।
और फिर संस्थाओं तक पहुंचती है। इस दृष्टिकोण से पोप ने कहा कि जॉन पॉल प्रथम की शिक्षा आज भी फिर से विचार किया जाना चाहिए और इसे शांति को एक आमूर्त विचार न मानने का बुलावा बताया, जिसे सिर्फ उन लोगों को सौंपा नहीं गया है जिन पर देशों के बीच स्थिरता और सामाजिक मेल जोल पक्का करने की बड़ी जिम्मेदारी है। संत पापा ने जोर देकर कहा, बुरी तरह हिली हुई दुनिया में शांति को बचाने और बढ़ावा देने का मतलब है जो विभाजित है उसे ठीक करना, सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करना, माफ करना और समझना, दूसरों की बात सुनना एवं उन्हें पहचानना, लोगों को सच्ची बातचीत के लिए प्रेरित करना तथा भाईचारा शब्द को पुनः एक बार ठोस कलीसियाई सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू देना। पोप लियो ने यह उम्मीद जताते हुए अपनी बात समाप्त की कि चिंतन का यह दिन पोप जॉन पॉल प्रथम के प्रेरितिक कार्य एवं धर्म शिक्षा की समझ को गहरा करने का एक अच्छा अवसर साबित हो। पोप ने अंत में सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष कार्डिनल माइकल चर्नी ने कस्तेल गंदोल्फो के लाउदातो सी विलेज में विलानोवा यूनिवर्सिटी से पोप लियो 14वें की स्थिरता पदक प्राप्त की और मानवता से अपील की कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीरता से काम करें। कार्डिनल चर्नी ने पदक प्राप्त करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर को, आप सभी को और मेरे माता पिता को धन्यवाद, जिनके प्रकृति के प्रति प्रेम एवं पुनः चक्रण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने मुझ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, और उन सभी का शुक्रिया जो गरीबों और धरती की पुकार सुनते हैं। 13 अक्टूबर की शाम को विलानोवा यूनिवर्सिटी ने कस्तेल गंदोल्फो के परमधम पीठे विल्ला में लाउदातो सी गांव में हुए एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक से सम्मानित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता पदक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे 2026 में विलानोवा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। यह उन लोगों को पहचान देता है जो पर्यावरण की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, सबसे कमजोर लोगों की देखभाल और संसाधनों की भली भांति देखभाल करने में नेतृत्व करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।